0: भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः नॉर्वेदेशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्ध कला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 लाख 79 हजार किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिक रूपेण स्वस्य ब्राडगेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, यूनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वा स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मिडवेब को 213.67 मीटर तथा 1404 किलोहर्ज में यो आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्र हो जसलाई यहाँले एफएम कञ्चनजङ्घाको 103 MHz अनि न्यूज एन आयर मोबाइल एपमा पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता यतिखेर बिहानको 7:05 गइरहेको छ अनि हामी लिएर आएका छौं पुराना

0: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ। पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: श्रोतामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बिहानको प्रसारण सेवामा बोलिरहेका छौं, जसलाई हामीले एफएम कञ्चनजङ्घाको 103 मेगाहर्ज न्यूज अन एयर मोबाइल एपमा पनि सुनिरहनु भएको छ। अनि तपाईँ सुनिरहनु भएको छ यो घड़ी पुराना हिन्दी फिल्मी गीतहरूको संगालो कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज। आउनुहोस्, अघिल्लो गीत लिएका छौं वीरेन नागद्वारा निर्देशित चलचित्र विशाल बात फिल्मबाट जरा नजरों से कह दो जी, हेमन्त कुमारको आवाजमा। सुनो यो अखिलो कौशली।
5: जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर

0: लौत श्रोता यसको साथै आजलाई छुट्टिने बेला भएको छ। भोलि बिहान फेरि यस्तै जानकारीहरू लिएर तपाईँ समक्ष आउनेछौ। तबसम्मको लागि हामी दुई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौ।
1: नमस्कार।
2: श्रोता प्रस्तुत थियो कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बिहानको प्रसारण सेवामा बोलिरहेका छौं। यतिखेर बिहानको ठिक 8 बजिरहेको छ। अब यहाँलाई आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सहप्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार, अनि 8:30 आकाशवाणीको शिलङ केन्द्रबाट पूर्वोत्तर समाचार अंग्रेजीमा।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
5: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
5: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
5: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
8: India is accelerating towards universal health coverage.
9: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध।

0: आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
4: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
5: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में तीसरा स्थान जबकि पाटिल ने पांचवा स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में एक वर्ष की कमी हुई है।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
7: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
8: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान दैनिक भास्कर में है।
2: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation.

रूठा रूठा सा लगता है। कोई तरकीब बता मनाने की? हम खुद को गिरवी रख देंगे तो कीमत तो बता मुस्कुराने की। जी हाँ, मुस्कुराते रहिए और उसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। नमस्कार, ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज हूं आपके साथ, करेंगे ढेर ढेर ढेर सारी बातें और साथ ही आपकी फरमाइश के गीत भी सुनेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी करनी होगी थोड़ी मेहनत। एफएम

ये सुनिए दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई ने भेजी थी इस गाने की रिक्वेस्ट मेरठ कैंट से। सुनते हैं।

बिल्कुल, गले लगाइए हर खुशी को और साथ में हमें मेल और व्हाट्सएप मैसेज भी करते रहिए। और उस धुन को अगर आपने पहचान लिया है जो मैंने आपसे कुछ ही देर पहले सुनाई थी आपको, तो गाने के बोल यानी मुखड़े के बोल जरूर आप हमें लिखकर भेजिए, वो भी जल्दी से जल्दी। चांद हो तुम मेरी रातों का, तुम्हारे बिना ये अंधेरा गहरा है, तुम्हारी ही रोशनी से मिलता है सुकून, वरना बेचैनियों का पहरा है। तुम साथ हो तो हर लम्हा हसीन है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। तुमसे ही जुड़ी है हर खुशी मेरी, तुमसे ही मेरा हर ख्वाब पूरा है। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने ये ईमेल भेजा है हमें और एक खूबसूरत से गीत की फरमाइश भी लिखकर भेजी है, जिसे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पूरा कर दें। अगला मैसेज हम खोल लेते हैं सुनील पाठक जी का, और इन्होंने भी एक फरमाइश लिखकर भेजी है, साथ ही नाम लिखे हैं कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक के साथ अनारकली बाजार जगराओं से ये ईमेल इन्होंने हमें भेजा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज ढूंढती हूँ मैं जिसमें लिखी हो कोई अच्छी सी शायरी या कोई अच्छी बात। आप तो जानते ही हैं, एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट बिल्कुल उसी की तरह अट्रैक्ट करते हैं वो ईमेल और वो मैसेजेस मुझे, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, खूब अच्छी सी शायरियां लिखी होती हैं, या फिर कोई भी ऐसी बात जिसे पढ़ने में ना दिल खुश हो जाए, एनर्जी आ जाए, एकदम से लगे कि हाँ भाई ये हुआ, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं मैसेज। और अभी तो मुझे फिलहाल सभी मैसेजेस में आज के सवाल का जवाब ही नजर आ रहा है, जिसे मैं अभी तो रिवील नहीं कर सकती हूँ। एक ईमेल आ गया है, बीत गई तारों वाली हसीन रात, अब सूरज ने फैलाई है अपनी बात, एक प्यारी सी सुबह आई है साथ, बोलो गुड मॉर्निंग और जी लो दिन खास, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ ये नया दिन, कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए, आओ आज मिलकर एक सुलह कर लेते हैं, दिल तुम रख लेना और हम तुम्हें रख लेते हैं। क्या बात है, दिल खुश कर दिया अनु जी आपने, वाकई। अनु बड़जात्या, शमशुल खान, अनुराज बेनारा के साथ मुंबई से सीधा ये मैसेज आया है हमारे पास, और वाकई बहुत अच्छा लगा। अगला मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है मुल्लापुर दाखा से। राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभचंद्र ने मिलकर ये ईमेल हमें भेजा है और लिखा है कि जिंदगी मिल के बिताएंगे, हंसते हंसते हर गम बुलाएंगे, जब तक है दम में दम। बिल्कुल जोश ऐसे ही बनाए रखिए, हम आपके साथ शामिल हैं। और व्हाट्सएप मैसेज का भी हम रुक कर लेते हैं। अब तो लिखा है भाई कि नाज जी नमस्कार, देखो जी आप सवाल तो पूछ लेते हो पर जवाब शामिल नहीं करते, ये बात तो बड़ी गलत है। गलत तो है, माफी के साथ मैं इस मैसेज को शामिल कर रही हूँ। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने ये मैसेज हमें भेजा है, नाम शामिल नहीं किया। अब इसकी भरपाई कैसे की जाए, ऐसा करते हैं आप ही की फरमाइश पूरी कर देते हैं, कैसा रहेगा, नाराजगी दूर हो जाएगी ना, तो ठीक है। एक बड़ा ही खूबसूरत गाना इन्होंने लिखकर भेजा है, फिल्म है रोटी, किशोर दा और लता जी की मीठी आवाज में है ये गाना, बहुत ही चुलबुला बहुत ही खूबसूरत गाना है, चलिए सुनते हैं और बोधराज जी की नाराजगी को दूर कर देते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ, यही है वो म्यूजिक पीस जिसे आपको सुनकर पहचानना है। और एक बात बताऊं आपको, ये कल वाला म्यूजिक पीस नहीं है उग्रसेन यादव जी। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं दोबारा वही ट्यून बजाऊंगी, वही सवाल पूछूंगी? मैं अपने मूल सिद्धांतों से भटक नहीं रही हूं, जैसा कि आपने लिखा है। बता दूं कि ये बिल्कुल अलग गाना है। कल मैंने जो धुन आपको सुनाई थी वो थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से, और गाना था पास वो आने लगे जरा जरा, याद आया? कल ये धुन मैंने आपको सुनाई थी, आज है दूसरी धुन। जरा ध्यान से सुनिए और जल्दी से जवाब लिखकर भेजिए। और अगला मैसेज आया है, नाम नहीं लिखा है इसमें, लिखा है दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल, खुदा बख्श खलीफा, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार के साथ गांधी चौक बाड़मेर से आया है ये मैसेज, और लिखा है नाज शेख साहिबा जी, आपकी आवाज में छुपा है कोई मीठा सा अफसाना, सुनकर जिसे दिल मेरा हो जाता है पूरी तरह दीवाना, जब भी आप धीरे से मेरा नाम बोलते हो यकीन मानो आप इस धड़कते हुए दिल को जीत लेते हो, कोयल की कूक भी आपके आगे अब फीकी सी लगती है, आपकी हर एक बात सीधे रूह में उतरती है, खामोश सुबह में जैसे कोई सुरीली सी बांसुरी बाजे, आपकी आवाज का जादू मेरे कानों में हर पल साजे, और आपकी आवाज पर हमें बड़ा नाज है। और इस मैसेज को पढ़ते पढ़ते मुझे ये एहसास हुआ कि ये मैसेज कल भी आया था ना, तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया, ये क्या बात हुई? अब मैं नाराज हूं। कोई बात नहीं, अगले शो में अगली बार कल नया मैसेज लिखिएगा नए आरजे के लिए। और अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं जल्दी से। दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। जरा जरा जरा नजरे इनायत मेरे मैसेज पर भी कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट भेजिए व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने। और मैंने देखिए आपकी रिक्वेस्ट को सराखों पर रखा है और आपके मैसेज को शामिल भी कर लिया है। अगला मैसेज हम शामिल करेंगे जल्दी से, क्योंकि घड़ी जो है ना बहुत तेजी से भाग रही है, और कमाल की बात देखिए आज भी मेरी नजर घड़ी पर ठीक 10:52 पर गई है। इत्तेफाक ही है, लेकिन बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। जिंदगी एक फन है अपने अंदाज में गवाने का, ओके? और साथ ही प्लीज के साथ अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है रवि, लता और प्रिया ने, विनिशा भीम के साथ है भिलाई से ये ईमेल हमारे पास आया है। और सईद अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि नाज ने अपनी जानकारियों का पिटारा खोला है, हमने भी दिमाग के घोड़े दौड़ाकर जवाब खोज निकाला है और एफएम गोल्ड को भेज दिया है, देखकर नाज के चेहरे पर मुस्कान आ

गई मगर हमारा नाम पढ़ने में कतरा रही है। खुदा सलामत रखे, नाज को हम दुआ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुआओं के लिए। और मैं नहीं कतरा रही हूँ आपका नाम पढ़ने से और ना ही आपका मैसेज शामिल करने से। सईद अब्बासी साहब, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी के साथ पूरा परिवार इस ईमेल में शामिल है। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा सांस लेती हूँ और वक्त नहीं है, सांस बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल जल्दी से एक मैसेज और मैं शामिल कर रही हूँ। खुशी को मुट्ठी में बांधना चाहा तो डर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया, जो अपना था उसे खोने का भय आया और मन ने खुद ही दुख का जाल बनाया। राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, चारू जटोलिया के साथ ये मैसेज आया हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए अब चूंकि वक्त बहुत कम बचा है तो मैं जल्दी से आज के गाने के बारे में आपको बता देती हूं। गीत के बोल ज्यादातर लिसनर्स ने लिख भेजे हैं और बिल्कुल सही लिखकर भेजे हैं। जी हाँ, ये सॉन्ग है 90s की सुपर हिट मूवी और सुपर हिट और एवरग्रीन सॉन्ग में से ये एक है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन मुझे पहले से मालूम था कि आप नहीं करेंगे मुझे निराश और दे ही देंगे बिल्कुल सही जवाब। शामिल करती हूँ आप सभी के नाम। उससे पहले जल्दी से फटाफट से इस ट्रैक से जुड़ी कुछ खास बातें बता दूं। 1994 में आई थी खुददार मूवी, म्यूजिक था द ग्रेट अनु मलिक साहब का, स्क्रीन पर दिखी गोविंदा और करिश्मा कपूर की सुपर हिट जोड़ी और ये खूबसूरत बोल निकले थे नन अदर देन राहत इंदौरी साहब के जहन और उनकी कलम से। वैसे तो इस मूवी का हर गाना हिट था लेकिन स्पेशली ये सॉन्ग कुछ अलग ही था। अभी तक ये हमारी प्लेलिस्ट और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। देर नहीं करूंगी वरना आप और ज्यादा नाराज हो जाएंगे मुझसे। मधुबाला तिलंग कोटला दिल्ली से, ताज मोहम्मद अंसारी लक्सर हरिद्वार से, विजय नागर पहलवान बाजार सीताराम से, दिल्ली में ये कोई जगह है, मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन गुन्नौर यूपी से, सुभाष गुप्ता किराड़ी दिल्ली से, चारू जटोलिया दिल्ली नांगलोई से, आफताब अंसारी गंज डुडवारा यूपी से। इतने नाम तो मैंने लिख लिए हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि कई नाम अभी भी मुझसे छूट गए होंगे। उन सभी से हाथ जोड़कर माफी। और साथ ही ये खूबसूरत ट्रैक अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज छोड़कर मत जाइएगा। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा और उसके बाद वापस लौट आइएगा, कार्यक्रम लेकर हाजिर रहूंगी तस्वीर। ठीक है,

0: क्या हमारा भी मैसेज शामिल होगा?
1: जी बिल्कुल होगा। धर्मेंद्र छीपा जी, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार के साथ ये मैसेज आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। और देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा नाम मैं शामिल कर सकूँ, तो एक मैसेज तो मुझे जरूर और कोई शामिल करना होगा। इंदिरा नगर भवरपुर छत्तीसगढ़ से आया राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन का उन्होंने भी दिया बिल्कुल सही जवाब, और यही था वो गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना पहली जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।

0: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, in another post, the Prime Minister thanked the Indian community in Italy for the warm welcome in Rome last evening. Mr. Modi said that the deep affection for India and commitment towards strengthening India-Italy ties are truly commendable. He added the Indian diaspora continues to make the nation proud across the world. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership has been guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. They said the partnership is acquiring a new dimension by combining the economic dynamism, societal creativity, and centuries-old civilizational wisdom of both nations. Earlier yesterday, India and Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland, and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टुडे हेल्ड अ मीटिंग विद हिज साउथ कोरियन काउंटरपार्ट एनग्यू बैक इन सोल। टुडे द मीटिंग दे डिस्कस वेज टू फर्दर डीपन इंडिया साउथ कोरिया

Namaskar, so swagatam, assalamu alaikum and have a grand welcome by me, aapki host aur ghumakkar dost, Naz. Tune kiya hua hai aapne Akashwani Delhi ka FM Gold channel 100.1 megahertz par. Aur jahan ke studio ki ghadi mein is waqt time hua hai 11:11:33. And as you know already, ki ye samay hai sair sapate ka. क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का। तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं हूँ पूरी तरह से तैयार, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए, आज मैं करवाने वाली हूँ आपको जन्नत की सैर। अरे अरे घबराइए मत, इस दुनिया के पार वाली जन्नत का वक्त नहीं आया है अभी। मैं तो बात कर रही हूँ यहीं इसी धरती पर मौजूद जन्नत यानी स्वर्ग यानी हेवन की। जी हाँ, सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर और गर्मियों में खूबसूरत फूलों के रंग जिस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, बस वहीं वहीं की सैर करेंगे आज। तो दोस्तों थाम लीजिए दिल और एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, क्योंकि जगह का नाम तो इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शाम की लाली, रात का काजल, सुबह की तकदीर हो तुम। चलता फिरता ताजमहल हो, सांस लेता कश्मीर हो तुम।

जी हाँ, अगर आपके भी जहन में था ये नाम कश्मीर, तो बजाइए खुद के लिए तालियां, क्योंकि बिल्कुल सही हैं आप। धरती के स्वर्ग, हेवन ऑन दिस अर्थ, जहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा सा है जैसा कि किसी ख्वाब में देखा हो कभी, वहीं मैं यानी नाज लेकर आ गई हूँ आपको अभी। वैसे तो कश्मीर की शान में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, लेकिन एक बड़ा ही मशहूर फारसी शेर है जो यहाँ आपकी नजर करना तो बनता है, तो अमीर खुसरो साहब से जोड़कर इस शेर को देखा जाता है, जिसमें कहा गया है कि गर फिरदौस बर्रुए जमीन नस्त, हमी नस्त ओ अमी नस्त ओ हमी नस्त। माने अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जमीन पर मौजूद ये जगह हर मायने में जन्नत कहलाने लायक है, तो जाहिर है कि इसकी तस्वीर भी बहुत बड़ी और खूबसूरत होगी, जिसे वक्त की पाबंदी के साथ पूरी तरह निहार पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करें, सिंपल है भाई, अपने प्लान को करते हैं थोड़ा सा लिमिटेड और चलते हैं कश्मीर में मौजूद एक और स्वर्ग, और चलते हैं खूबसूरत गुलमर्ग।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूं और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कश्मीर का मुकुट या फिर खूबसूरत फूलों का मैदान और जिसे कहा जाता है गुलमर्ग, वहीं की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। वर्ल्ड फेमस साइट है और सी लेवल से इसकी ऊंचाई 2730 मीटर के आसपास है। अपनी नेचुरल ब्यूटी, बर्फ से ढके पहाड़ों और रंग बिरंगे फूलों से सजे मैदानों के लिए ये जगह जानी जाती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में ये जगह आती है और मेन अट्रैक्शंस कौन कौन से हैं यहाँ, इस पर तफसील से होगी बात। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कैसे और किस तरह पहुंचेंगे आप कश्मीर और फिर खूबसूरत गुलमर्ग। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा श्रीनगर एयरपोर्ट अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो, और गुलमर्ग के लिए यहां से आपको तय करनी होगी करीब 55 किलोमीटर की दूरी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही गुलमर्ग के लिए सीधी टैक्सी आपको मिल जाएगी और इस सफर में आपको लगेंगे करीब 2 से 2.5 घंटे। बाय ट्रेन अगर आपका गुलमर्ग जाने का विचार है तो टिकट आप खरीदेंगे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का, जो देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है, और फिर यहां से भी आप श्रीनगर या फिर गुलमर्ग के लिए सीधी टैक्सी बुक कर सकते हैं। कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है कि श्रीनगर से गुलमर्ग जाते हुए करीब 14 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है टनमर्ग। विंटर्स में जब भारी बर्फबारी यहां पर होती है तो नॉर्मली गाड़ियों को यहीं पर रोक दिया जाता है और यहां से आगे यानी गुलमर्ग की ओर बढ़ने के लिए आपको बुक करनी होती है स्नो चेन वाली गाड़ियां। वो गाड़ियां जिनके टायरों पर चेन चढ़ी होती है और वो बर्फीले रास्तों पर फिसलती नहीं है। सुनिए ये खूबसूरत ट्रैक और फिर बातें करेंगे।

जबरदस्त स्नोफॉल देखने और करीब से महसूस करने का है अगर आपका सपना, तो जनाब गुलमर्ग आइए और दिसंबर से मार्च के बीच आइए, क्योंकि इस दौरान पूरे कश्मीर में बढ़िया बर्फबारी होती है और खासकर गुलमर्ग आपके एडवेंचर के हर शौक को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। शीतकालीन खेलों का केंद्र इस जगह को कहा जाता है, जहां स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, हॉर्स राइडिंग, हेली स्कीइंग या फिर टोबो गनिंग जैसी कई एक्टिविटीज का आप पार्ट बन सकते हैं। 2650 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स भी यहीं गुलमर्ग में मौजूद है जनाब। और इसके अलावा ट्रैकिंग और हिल क्लाइंबिंग के लिए भी ये जगह परफेक्ट है। गर्मियों में यानी मार्च से जून के बीच अगर आप आएंगे तो आपको नजर आएंगी हरी भरी वादियां, रंग बिरंगे फूल और सुहाना मौसम, जो मैदानी इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून देने वाला होता है। कुल मिलाकर मोटा मोटी बात यह है कि आप चाहे जब भी गुलमर्ग आएं, यहां की खूबसूरती को कभी भूल नहीं पाएंगे।

गुल खिले हैं वादियों में, महक उठी है हर डगर, गुलमर्ग की इस खूबसूरती पर ठहर जाती है हर नजर। और जन्नत की जमीन पर बिखरे हो जैसे कुदरत के रंग हजार, गुलमर्ग की हवाओं में बहती है सिर्फ मोहब्बत और बहार। बिल्कुल सच बात है जी, और इस सच्चाई की गवाह मैं खुद भी हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं खुद अपनी फैमिली के साथ गुलमर्ग घूमकर आ चुकी हूँ, और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल रही हूँ कि जरूर जरूर जरूर आपको करनी चाहिए कश्मीर और यहाँ के गुलमर्ग की सैर। अच्छा, गुलमर्ग ये नाम कैसे इस जगह का पड़ा, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है, तो सुनिए। गुलमर्ग या गुलमार्ग, कश्मीरी भाषा में इसका मतलब होता है गुलाबों या फिर फूलों का रास्ता, या फिर फूलों का मैदान भी आप इसे कह सकते हैं। पुराना नाम इस जगह का है गौरी मार्ग, जिसका मतलब है देवी गौरी का मार्ग। लेकिन फिर साल 1579 से 1586 तक यहां शासन करने वाले यूसुफ शाह चक ने इस जगह का नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया था। 17वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान और फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश काल में ये जगह गर्मियों की सैरगाह के रूप में मशहूर हुई, और वो साल था 1927 जब यहां गुलमर्ग में स्की क्लब की स्थापना हुई। फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन का जब अंत हुआ तो ये जगह कश्मीर और जम्मू रियासत का हिस्सा बन गई, और इसके बाद अक्टूबर 1947 में भारत में मिल गई। इस बीच कुछ समय के लिए इस जगह पर पाकिस्तान का कब्जा भी रहा, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने इसे वापस ले लिया। तो ये थी इतिहास के पन्नों में गुलमर्ग की कहानी। मिलूंगी आपसे इस अगले गाने के बाद, तो जानेंगे यहाँ के फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स मेरी जुबानी।

0: के साह्रो मख परेर के सुनेको हो मोबाइलमा?
1: रेडियो गान्तोक सुनेको नि। अहिले त यो मोबाइल एपमा पनि रेडियो गान्तोक मजाले सुन्न सकिन्छ नि। सुन्नुहोस् त।

0: श्रोता, हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै तपाईले हामीलाई 103 MHz एफएम कञ्चनजंघामा तथा मोबाइल एप न्यूज अन एआईआरमा पनि सुनिरहनु भएको छ। समय अहिले दिउँसोको 12:40 भइसकेको छ। श्रोता, हामी उपस्थित भएका छौं हिन्दी व्याकरणको जानकारी गराउने कार्यक्रम हिन्दी भाषा पाठ लिएर, जस अन्तर्गत आज हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौं सार लेखन विषयबारे, जसलाई लिएर यहाँ हुनुहुन्छ संगीता कौशिक।
1: नमस्ते बच्चो, कैसे आप?
2: नमस्ते मैम, हम ठीक है।
1: मैं संगीता कौशिक आकाशवाणी गांतोक की ओर से सभी विद्यार्थी श्रोतागणों का भी इस व्याकरण की कक्षा में स्वागत करती हूँ। श्रोतागण, आज मेरे साथ हमारी इस कक्षा में दो विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनसे उनका परिचय जान लेते हैं। बच्चों, आप दोनों अपना अपना परिचय दीजिए।
3: मैम, मेरा नाम अरम जैन है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम माउंट जायन स्कूल है।
4: मैम, मेरा नाम स्पर्श मिश्रा है, मैं भी कक्षा 9 का छात्र हूँ तथा मेरे विद्यालय का नाम भी माउंट जायन है।
1: बच्चों, आज के इस व्याकरण की कक्षा में हम सार लेखन कैसे करते हैं सीखेंगे। यह विषय हमारी लेखन शैली में भाषाई कौशल को बढ़ाता है। आप सभी ध्यान से सुने तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते भी रहे, कारण मैं इसे विस्तार पूर्वक विश्लेषण कर समझाने वाली हूँ, जो आपके लिए रोचक भी होगा कि कैसे हम लेखन प्रस्तुति को उत्कृष्ट बनाकर अन्य क्षेत्र में अपना योगदान, यानी लेखन क्षेत्र में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। सार लेखन जीवन के कई क्षेत्रों में उपयोगी होता है, जैसे कि शिक्षा, व्यवसाय, आकाशवाणी और पत्रकारिता। यह किसी भी बड़े पाठ, लेख या रिपोर्ट को संक्षिप्त करने और उसके मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करने में मदद करता है।
3: मैम, हिंदी में सार लेखन का क्या मतलब है?
1: अरहम, आपकी जिज्ञासु प्रकृति जानकर मुझे अच्छा लगा, तो ध्यान देकर सुनिए। सार लेखन का अर्थ है किसी भी विस्तृत या बड़ी सामग्री को संक्षिप्त यानी छोटे रूप में और स्पष्ट रूप से मूल भाव को बनाए रखते हुए कम शब्दों में व्यक्त करना। एक बार पुनः दोहराती हूँ, सार लेखन का अर्थ है किसी विस्तृत या बड़ी सामग्री को संक्षिप्त यानी छोटे रूप में और स्पष्ट रूप से मूल भाव को बनाए रखते हुए कम शब्दों में व्यक्त करना। चलिए अरहम, आप बताइए सार लेखन का क्या अर्थ है?
3: मैम, सार लेखन का मतलब है किसी बड़ी सामग्री को छोटे रूप में और स्पष्ट रूप में मूल भाव को बनाए रखते हुए कम शब्दों में बताना।
1: बहुत अच्छे, आपने ध्यान देकर सुना और समझा।
4: मैम, अगर हम ये सार लेखन अच्छे से समझ गए तो क्या मुझे भी बड़ी कहानी को छोटे रूप में लिखना बोलना आ जाएगा? आप थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए ना।

0: हाँ जरूर स्पर्श, आप एकाग्रचित होकर सुनिए तथा लिखते भी रहे। विद्यार्थी श्रोतागण, आप भी इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान से लिखते रहें, जो आपको आगे जाकर सहायक सामग्री के रूप में उपलब्ध रहेगी। सार एक अकादमिक पाठ का संक्षिप्त सारांश होता है, जैसे कि जनरल लेख, शोध प्रबंध या थीसिस, यानी एक नजर में महत्वपूर्ण जानकारी को स्कैन करने की अनुमति। शोधकर्ता यह लेने के लिए सार संक्षेप का उपयोग करते हैं कि कोई आलेख, शोध या अन्य शैक्षणिक पाठ उनके अपने कार्य के लिए प्रासंगिक या लागू है या नहीं। बच्चों, आप सभी समझ रहे हैं ना?
1: जी मैम।
0: चलिए आप स्पर्श बताएंगे सार लेखन की परिभाषा। आपने जो लिखा है वह पढ़कर बताइए।
2: मैम, मैं कोशिश करता हूँ। सार लेखन का अर्थ है किसी पाठ, लेख आदि को छोटे रूप में लिखना, ताकि उसका मूल अर्थ या मुख्य विचार स्पष्ट हो सके, तथा सार लेखन का उद्देश्य किसी लंबी सामग्री को छोटा करना और उसे समझने के योग्य बनाना है।
0: बहुत अच्छे, आपकी समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि सार लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, पहली विशेषता है संक्षिप्तता। सार लेखन में मूल सामग्री की तुलना में कम शब्दों का इसमें उपयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है स्पष्टता। इस लेखन में सभी मुख्य विचारों को स्पष्ट और आसानी से समझा जा सके, इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। तीसरी विशेषता है प्रामाणिकता। सार लेखन में मूल सामग्री के विचारों को यथासंभव सही और सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तथा चौथी विशेषता है सरलता। सरलता सार लेखन में भाषा लेखन को सहज बनाता है, तथा इसकी भाषा सहज भी होनी चाहिए ताकि पाठक आसानी से समझ सके। बच्चों, अब आप बताएंगे चार विशेषताएं जो अभी आपने लिखी।
1: मैम, पहली विशेषता है संक्षिप्तता, दूसरी स्पष्टता, तीसरी प्रामाणिकता तथा चौथी विशेषता है सरलता। मैम, सार लेखन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगी?
0: हाँ जी, जरूर सुनिए। सार लेखन की प्रक्रिया करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। सार लेखन के कुछ चरण हैं, उनमें से मुख्य है मूल बिंदु का चयन, संबंधित बिंदुओं का भी चयन, मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम देना, यानी जो मूल सामग्री है वो और संबंधित उसके जो बिंदु है उसको क्रम देना, अनावश्यक सामग्री को छोड़ना तथा उपयुक्त आकार में सार लिखना आदि। बच्चों, अब तक हमने सार लेखन की परिभाषा, विशेषताएं तथा प्रक्रिया के बारे में जाना। अब हम सार लेखन के कितने प्रकार है इस पर विचार करेंगे। तो बच्चों, आप किसी भी गद्यांश को पढ़ने पर पाएंगे कि लेखक विशिष्ट रूप से किसी बात पर पाठक का ध्यान केंद्रित करना चाहता है, यही उस गद्यांश का मूल भाव होता है। गद्यांश को दो या तीन बार पढ़कर उसके मूल भाव को समझा जा सकता है।
2: मैम, क्या सार लेखन के भी प्रकार होते हैं, कृपया समझा दीजिए ना।
0: हाँ, सार लेखन के भी प्रकार होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सार लेखन चार प्रकार के होते हैं, प्रेरक लेखन, वर्णात्मक लेखन, कथात्मक लेखन और व्याख्यात्मक लेखन। एक बार और बताती हूँ, प्रेरक लेखन, वर्णात्मक लेखन, कथात्मक लेखन और व्याख्यात्मक लेखन। तो चलिए जल्दी से इनकी परिभाषा भी जान लेते हैं। पहला जानेंगे प्रेरक लेखन। प्रेरक लेखन का मुख्य नियम विश्वास दिलाना है। यह एक ऐसा रूप है जिसमें लेखक तर्क, समर्थन, साक्ष्य और सम्मोहक तर्क प्रस्तुत करके पाठक को लेखक के दृष्टिकोण की ओर आकर्षित करता है। इसका उपयोग अक्सर शिकायत पत्रों, विज्ञापनों या समाचार पत्रों की राय आदि में किया जाता है। अब जानिए वर्णात्मक लेखन की परिभाषा। इस लेखन का उद्देश्य वर्णन करना है। यह लेखन की एक विधि है जो किसी चरित्र, घटना या स्थान का बहुत विस्तार से वर्णन करने पर केंद्रित है। यह काव्यात्मक भी हो सकता है। तीसरा है कथात्मक लेखन की परिभाषा। इस लेखन में कहानी वास्तविक हो या काल्पनिक, कथात्मक शैली में लिखे गए लेखों में पात्र होंगे और कथात्मक के माध्यम से पाठक सीखता है कि उनके साथ क्या होता है। इस लेखन में संवाद भी शामिल हो सकते हैं तथा यह एक कहानी बताता है। लेखक अलग अलग पात्रों का निर्माण करेगा और आपको बताएगा कि उनके साथ क्या होता है। इस लेखन शैली के अंतर्गत आते हैं उपन्यास, लघु कथाएं, लघु उपन्यास, संग स्मरण, आत्मकथाएं तथा कविता भी कथात्मक शैली में आ सकती है। तो बच्चों, चौथे लेखन पर हम पुनः लौटेंगे। पहले आरहम आप बताइए, कथात्मक लेखन की परिभाषा जो आप लिख रहे थे यहाँ बताइए।
1: जी मैम, मैं कोशिश करता हूँ। कथात्मक लेखन में कहानी वास्तविक भी हो सकती है तथा काल्पनिक भी हो सकती है। इस लेखन में संवाद यानी डायलॉग भी होते हैं। पात्रों का निर्माण कर लेखक हमें बताता है कि उनके साथ कैसी घटना घटी। इस शैली के अंतर्गत उपन्यास, लघु कथा है, आत्मकथाएं तथा कविता आती है, जैसे हम सिनेमा में देखते हैं, है ना मैम?
0: जी, आपने बहुत अच्छा से समझा और कथात्मक लेखन की अच्छी व्याख्या की। चलिए अब हम चौथे सार लेखन का प्रकार जान लेते हैं और चौथा है व्याख्यात्मक लेखन। व्याख्यात्मक लेखन की भाषा स्पष्ट और सीधी होनी चाहिए ताकि पाठक बिना किसी भ्रम के समझ सके कि लेखक क्या कहना चाहता है। यह लेखन सूचनात्मक लेखन भी कहलाता है और इसका उद्देश्य पाठकों को तथ्यों की जानकारी देना है, ना कि उन्हें प्रभावित करना। यह लेखन सबसे आम प्रकारों में से एक है। आप इसे हमेशा पाठ्य पुस्तकों में तथा कैसे करें लेखों में पढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समझाना और सूचित करना है। व्याख्यात्मक लेखन तथ्यों को सामने रखता है। अब स्पर्श, आप व्याख्यात्मक लेखन की परिभाषा बताएंगे।
2: जी मैम, इस लेखन की भाषा साफ और सीधी होनी चाहिए ताकि हम पाठक बिना किसी भ्रम के समझ सके कि पाठ में लेखक क्या कहना चाहता है। ये लेखन सूचनात्मक भी कहलाता है। ये लेखन का आम प्रकार है, हम इसे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं। व्याख्यात्मक लेखन का उपयोग शिक्षा, पत्रकारिता आदि में देखने पढ़ने को मिलता है।
0: बहुत अच्छे स्पर्श, आप अच्छे से ध्यान दे रहे हैं अपनी कक्षा में और आपने अच्छा से समझा है। विद्यार्थी श्रोतागणों से भी अनुरोध है कि मुख्य बिंदुओं को अपनी कापी में लिखते रहें। बच्चों, अगर हम सार लेखन करते हैं तो मुख्य बिंदुओं का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, ठीक है? अब हम बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि कैसे सार लेखन में बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। पहला बिंदु है, पूरे गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। दूसरा बिंदु है, दिए गए गद्यांश का ठीक ठीक अर्थ समझ लेना चाहिए। तीसरा बिंदु है, उसके महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करना चाहिए। चौथा बिंदु है, गद्यांश के अनावश्यक विस्तार, सुक्तियों आदि को छोड़ देना चाहिए। पांचवा बिंदु है, यह लेखन अपनी भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। छठा, सार लेखन मूल गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। सातवां बिंदु है, जहाँ तक हो सके वाक्य सरल व छोटे होने चाहिए। आठवां बिंदु है, शीर्षक ऐसा चुनना

0: चाहिए जो गद्यांश के संपूर्ण भाव को प्रकट करता हो। समझ आया? तो चलिए सार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखने हेतु इन बिंदुओं को आप एक एक करके सुनाएंगे और हम आप पढ़ेंगे।
1: मैम, पहला, पूरे गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। दूसरा, दिए गए गद्यांश का ठीक ठीक अर्थ समझ लेना चाहिए। तीसरा, उसके महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करना चाहिए। चौथा, गद्यांश के अनावश्यक सूक्तियों को छोड़ देना चाहिए। पांचवा, लेखन अपनी भाषा में लिखा जाए तो बेहतर होता है। छठा, सार लेखन गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। सातवां, जहाँ तक हो सके वाक्य सरल व छोटे होने चाहिए। आठवां, शीर्षक ऐसा हो कि गद्यांश का संपूर्ण भाव प्रकट करता हो।
0: बहुत अच्छे, आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा और समझा। बच्चों, आपने बड़ी स्पष्टता दिखाई है अपने बिंदुओं के पठन पर। तो अब बच्चों, अब हम सार लेखन कैसे लिखते हैं एक गद्यांश के उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण इस तरह है, आप ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि मानव आरंभिक जीवन में अधिक लचीला और प्रशिक्षण के लिए विशेषकर अनुकूल होता है यदि माता पिता, अध्यापक और सरकार तीनों मिलकर प्रयास करें तो वे बालक को जैसा चाहे वैसा वातावरण देकर उसकी जीवन दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जीवन का यह समय मिट्टी के उस कच्चे घड़े के समान होता है जिसके विकारों को मनचाहे ढंग से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह पके हुए घड़ों में पाए जाने वाले दोषों में सुधार करना असंभव है, उसी तरह यौवन के दहलीज को पार कर 20-25 वर्ष के युवक के अंदर आमूल परिवर्तन लाना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी को किसी भी सांचे में ढालकर किसी भी नए रूप में बदला जा सकता है, लेकिन जब वह एक बार एक प्रकार का बन जाता है तो उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास बहुत ही कम सफल हो पाता है। किसी लड़के या लड़की के व्यक्तित्व के निर्माण का मुख्य उत्तरदायित्व हमारे समाज, हमारे सरकार और स्वयं माता पिता पर है, तथा बहुत कुछ स्वयं लड़के या लड़की पर भी है। कोई भी व्यक्ति अपने ध्येय में तभी सफल हो सकता है जब वह अपने जीवन के आरंभिक दिनों में भी वैसा करने का प्रयास करे। इस दृष्टि से विद्याध्ययन का समय ही मानव जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। हम सभी का और स्वयं विद्यार्थियों का भी यही कर्तव्य है कि सभी इस तथ्य को अपने सामने रखे और हमेशा याद रखे। अब हम इस गद्यांश का सार लेखन कैसे लिखते हैं उसे जानेंगे।
1: जी मैम।
0: सार लेखन का शीर्षक है बाल्यकाल और इसका सार लेखन इस प्रकार होगा। बाल्यकाल मानव की वह अवस्था है जिसमें उसके जीवन को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। युवावस्था प्राप्ति के बाद उसकी जीवन दिशा को बदलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी से इच्छा के अनुसार आकृति बना सकते हैं, पक जाने पर उसका रूप परिवर्तन करना असंभव है। बालक हो या बालिका, उसके जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता पिता के कंधों पर है। उसके अपने प्रयास भी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ से उस दिशा में प्रयत्न करने पर ही सफलता मिलती है। तो आप सब समझे कि इतना बड़ा शीर्षक जो था हमारा, उसको हमने कैसे छोटे सार में लिखा।
1: जी मैम। अरे वाह मैम, आपने तो इस गद्यांश का सार बहुत छोटा बना दिया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा सार लेखन लिख सकूं।
2: मैम, मुझे ये सार लेखन बड़ा रोचक लगा तथा मैं समझ गया कि कैसे बड़ी सामग्री को उसके मूल भाव वो बनाए रखते हुए हम कम शब्दों में व्यक्त करते हैं।
0: मुझे खुशी हुई कि आपने सार लेखन अच्छे से सीखा तथा समझा। घर जाकर पुनः सार लेखन की परिभाषा तथा विशेषताओं पर गौर करेंगे तथा व्याकरण की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 104 में एक गद्यांश है जिसका सार लेखन आप सभी को करना है। विद्यार्थी श्रोतागण, आप भी इस गद्यांश का सार लेखन करिएगा।
1: जी मैम, हम जरूर करेंगे।
0: अब हम अपने विद्यार्थी श्रोतागणों से भी विदा लेते हैं तथा अगली कक्षा में एक नया पाठ लेकर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद बच्चों।
1: धन्यवाद मैम।
3: श्रोता सुन्दै हुनुहुन्थ्यो हिन्दी भाषा पाठको कार्यक्रम, जस अन्तर्गत आज हामीले जानकारी गरायौं सार लेखन विषय बारे। जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो संगीता कौशिक। हर घरको वाणी आकाशवाणी, हरेकको हृदयको वाणी आकाशवाणी, अनि सबैको हृदयलाई जोड्नका लागि हामी आइसकेका छौं मात्र एउटा क्लिकमा। हाम्रो स्टेशन्स लाइभमा मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, हर पलको विश्वसनीय खबर। हाम्रो वेबसाइट akashwani.gov.in मा नयाँ भारत, नयाँ आकाशवाणी।
4: के साह्रो मख परेर के सुनेको हो मोबाइलमा?
5: रेडियो गान्तोक सुनेको नि। अहिले त यो मोबाइल एपमा पनि रेडियो गान्तोक मजाले सुन्न सकिन्छ नि। सुन्नुहोस् त।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार श्रोताओं। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओ, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए है। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी,
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
2: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
2: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
3: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
4: Hello children.
5: Hello ma'am.
6: Hello ma'am.
4: Hello, hello. How are you all?
5: We are fine ma'am.
7: I am fine ma'am.
8: How are you ma'am?
4: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
5: Yes, ma'am.
6: Yes, ma'am.
4: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
5: Yes,
8: ma'am. Pets are so lovely.
4: Right, Soham.
9: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
4: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
9: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
4: Wow, that's good. And what about you, Navya?
10: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
4: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
11: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
4: Oh, that's so exciting, isn't it?
5: Yes, ma'am.
4: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
5: Yes, ma'am.
4: Can you name some birds?
12: Sparrow.
4: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
13: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
4: Yes, peacock is a colorful bird.
14: Ma'am, parrot.
4: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
15: Any guesses?
4: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
5: Yes, ma'am.
16: It will be fun.
4: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know.
5: How to be beautiful.
4: He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail. Then he found another. He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful.
5: I am now beautiful.
4: He danced and said.
5: He danced and said.
4: The other crows loved at him.
5: Loved at him.
6: Oh, what a fool you are.
5: Oh, what a fool you are.
6: You are beautiful in black.
5: You are beautiful in black.
6: We love you.
5: We love you.
6: For what you are.
5: For what you are.
4: So children, now listen to the same poem in a lovely song.
5: Okay.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
2: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
2: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
2: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
2: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते एक पौधा लगाओ?
2: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
2: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिक काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये

0: गेंदे का पौधा है।
1: गेंदे का पौधा?
0: जी।
1: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
0: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
2: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
0: हाँ।
1: देखभाल? वो कैसे?
0: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
1: अच्छा।
0: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
1: ये तो मैं जरूर करूँगा।
0: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
2: राजू बेटा
1: जी?
2: अच्छा अब घर चलें?
1: जी धन्यवाद मालिका का।
0: अरे बेटा
2: चलो बेटा।
0: जी दे।
1: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या रहा प्यारा है। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है, लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

0: का जमाना हमारा,
1: ये हवा ये नदी का किनारा,
0: चांद तारों का रंगी इशारा,
2: कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा, ये हवा ये नदी का किनारा।
3: क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल।

किए जाए। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सोख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़ें और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोन्टाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई, शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहां हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोन्टाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ पांच गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

0: बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुन्दर का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था तो अब ये गाना,
1: अपने
0: इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है।

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नजारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आसमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीक हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना। बंदिनी फिल्म का गीत और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है दो नदियों के बीच बसा है, महानदी और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि उन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहती है मैं अपने पति से, एक श्रोता है जो अपनी बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की। मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती है कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही है कि इतने सारे पंछी नजर आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूं। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

0: दोस्तों, ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है। जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त।
1: Good afternoon. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the Midday News.

0: निर्धारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGF-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर

0: एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भगवंत खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
4: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: श्रोता, हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै तपाईले हामीलाई 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजंगामा तथा मोबाइल एप न्यूज अन एआईआरमा पनि सुनिरहनु भएको छ। समय अहिले दिउँसोको 2:30 भइसकेको छ। श्रोता, हामी उपस्थित भएका छौं सिक्किमी भुटिया लोकगीतको कार्यक्रम लिएर। त्यस अन्तर्गत आज हामी सुनाउनेछौ गायक कलाकार हिसिदोर्जी अनि साथीहरूको समूह आवाजमा रहेका केही सिक्किमी भुटिया लोकगीतहरू।

0: हवस्त श्रोता, हिसे दोर्जी अनि साथीहरूको समूह आवाजमा रहेका यिनै लोकगीतहरूको साथमा आजको हाम्रो सिक्किमे भुटिया लोकगीतको कार्यक्रम यही नै समाप्त हुँदछ। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै तपाईँले हामीलाई 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजंघामा तथा मोबाइल एप न्यूज अन एआईआरमा पनि सुनिरहनु भएको छ। समय अहिले अपराह्नको 3 बज्न लागिरहेको छ। श्रोता, अब हामी उसो 3:57 मिनटसम्मका कार्यक्रमहरू आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ। जसमा प्रथममा सुन्नुहुनेछ समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। वार्ता के दौरान भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूएलपीजीएम V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सहउत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने हेतु सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, झारखंड, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आंधी चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। राजस्थान के अधिकांश जिले इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to discuss ways to boost India-Italy cooperation. With a focus on strengthening India-Italy relations, major pacts may be announced later in the day. Both leaders will exchange perspectives on a wide range of subjects. A series of programs will be held in Rome to mark the importance of the bilateral relations between the two countries. PM Modi's visit will also focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed during the meeting. In a social media post before the talks, Prime Minister Modi expressed hope that the talks will be focusing on strengthening India-Italy relations. Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Prime Minister will be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. President Draupadi Murmu today said that to achieve the goal of a Viksit Bharat and take society to the pinnacle of progress, officers will often have to move forward by striving against the tide. She said this after a group of IAS officers from the 2024 batch called on her at Rashtrapati Bhavan today. The president said the young officers will have the unique opportunity to work in diverse fields and head teams of experts in specialized areas. Ms. Murmu said refraining from making a decision does not constitute morality. She emphasized that taking the right decisions in alignment with public interest and established order represents the true essence of morality. Defence Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart Ah Joo-bak in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defence industry and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defence cyber cooperation. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, public sector undertakings, defence cum production partners and industry for the successful development trials of ULPGM V3. He highlighted its effectiveness in air-to-ground mode for anti-tank role and air-to-air modes for drone, helicopter and other airborne targets. Mr. Singh termed it a strategic milestone achieved towards Atmanirbharta in defence. The Supreme Court today dismissed a petition challenging the centre's decision to undertake caste enumeration as part of the upcoming census, saying the issue falls within the policy domain of the government. A bench headed by Chief Justice Suryakant observed that the government needs to know the number of people belonging to backward classes to frame welfare measures for them. The bench said there was nothing wrong in collecting such data and declined to interfere in the matter. The National Commission for Women, or NCW, has taken Suomoto cognizance of the reported suspicious death of a 33-year-old woman from Noida in Bhopal, Madhya Pradesh. Taking serious note of the matter, NCW Chairperson Vijaya Rahatkar has written to the Chief Secretary and Director General of Police of Madhya Pradesh, directing them to ensure a prompt, impartial and time-bound investigation. The Commission has also sought a detailed action taken report within 7 days. The NCW has further directed the authorities to ensure the safety and protection of the victim's family from any threats or intimidation. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. As the league stage nears its end, five teams remain in contention for the lone remaining playoff spot. Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already qualified for the playoffs. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ प्रियांशी भटनागर आपके साथ कार्यक्रम मन भावन में, जहाँ दोपहर की इस शांत लय में आपके मन पसंद गीतों की सुरीली माला बनती है और मन भावन समर्पित है उन भावनाओं को, उन यादों को जो हर गीत के साथ फिर से मुस्कुरा उठती हैं। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और संदेश ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई बात जो मन में ठहर गई हो, कोई संदेश अपने मन पसंद गीत के साथ हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा प्रयास रहता है कि आपकी इन भावनाओं को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें। तो श्रोताओं, देर किस बात की, हमें भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर। हमारा ईमेल पता है fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868686753 पर। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, हमारा ईमेल है fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868686753 पर। क्या पता कहीं अगला मन भावन पल आपके ही गीत से शुरू हो जाए।

संगीत की इस दिलकश लहर के बाद आइए सुनते हैं आपकी आवाज। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई ने संदेश भेजा है। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। नथाना पंजाब से हरजिंदर छींदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने भी हमें संदेश भेजा है। दिल्ली से पीतमपुरा से अनीता वर्मा जी ने, और हितेंद्र दास लिख रहे हैं आसाम से। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला खूबसूरत गीत।

आइए श्रोताओं, अब फिर आपके भेजे हुए कुछ संदेश पढ़ लें। जिला खरगांव सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने भी हमारे साथ जुड़े हैं। और अगला फरमाइशी गीत भेजा है मनकारा मंदिर बीडीए बरेली उत्तर प्रदेश से बीनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष, अमर, हितेश, राजेश, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शुगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह ने। तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बहुत ही मधुर गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने पर बहुत बहुत बहुत बधाई। 90 साल का कामयाब सफर तय करना कोई आसान बात नहीं है। आकाशवाणी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। आपने मुझे आज तक अपने साथ जोड़ कर रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन की हर पड़ाव, सफलता, मेरे जीवन के संघर्ष, कोई भी चीज आपसे छुपे नहीं। आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से मुझे कई अवसर दिए कि मैं देश भर के श्रोताओं से जुड़ी रहूं। आप मेरी आवाज बने, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम मन भावन में आप सभी के मनपसंद गीतों और हार्दिक संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, अगर आपने अभी भी नहीं लिख भेजा है तो जल्द ही करके लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर fmgoldairdelhi@gmail.com पर, या हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेजें 9868687 पर। तो आइए तब तक आपके कुछ और संदेश पढ़ें और फिर सुनते हैं आपकी फरमाइश का गीत। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत और कमल साहनी हमें लिख रहे हैं पंजाब से, महाराष्ट्र से विजय, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार, हिसार से राजकुमार जी और इनके साथ प्रमोद और पुष्पेंद्र भी जुड़े हैं, जालंधर से राजेश कुमार चौहान हमें लिख रहे हैं, आर्यनगर भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल और इनके साथ हैं मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी, और सुर्खी कला से अमित, शुकन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि इनके साथ जुड़े हैं। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु जुड़े हैं और इन्होंने भी हमें अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है, और पंजाब के खेड़ा परिवार हमें लिख रहा है। इनमें हमारे साथ जुड़े हैं भूषण जी, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, देवनाशी, वाणी और बी खेड़ा। इनके साथ और भी जुड़े हैं जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार। तो आइए श्रोताओं, इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये मधुर गीत।

गीतों की इस मधुर छाप के बीच अब शामिल करते हैं आपकी बातें और आपके शहर। इंदिरा नगर भवरपुर से राधे श्याम देवांगन और चंपा देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अदान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। शबनम, अकरम और तबरेज हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली हमारे साथ जुड़े हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य, मेघा और चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और किशोरिधान हमारे साथ जुड़े हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव।

दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, और कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार श्रोताओं, हम जल्द ही लौट आए हैं फिर से आपके मनपसंद कार्यक्रम मनभावन में एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं प्रियांशी और समय इशारा कर रहा है, पर आपके कुछ और संदेश भी जल्दी से पढ़ जाते हैं। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या हमारे साथ जुड़े हैं। खामगांव से अनंता, रामेश्वर, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाडे परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबिर राही और महराज जहान हमारे साथ जुड़े हैं। हरिद्वार से, मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, नवृत्ति और संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। बाड़मेर राजस्थान से बबलेश, डैनी, मनीष, रामदेवरा से दिनेश, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से

हमारे साथ खुदा बख्श खलीफा जुड़े हैं। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली हमारे साथ जुड़े हैं, मुजफ्फर अली हमारे साथ जुड़े हैं और एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीदवार से सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ और सिकंदरा राव से मुबीन और इशरत हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु हमारे साथ जुड़े हैं। नूर आयशा अहमद, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना, आसमा, रबिया परी, आशु जूही सदफ और तेघड़ा बाजार से अदीबा, नन्हे राजा, फिरोज, शाह आलम, वाली आलम और समस्त बागवान फैमिली हमारे साथ जुड़ी है। तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जी का। नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर हमें लिख रहे हैं, निर्मला जी, पीएस जी और विशाल जी इनके साथ जुड़े हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा हमारे साथ जुड़े हैं। जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस हमारे साथ जुड़े हैं। खंडवा से विजय महोबिया, कविता जी इनके साथ हैं। और शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी और अनय, अनाया और ईशु बाबा जुड़े हैं। शीतला चौक से विशाल और विवेक भी जुड़े हैं। अमरावती से हमारे साथ साधना रानी और किशोर गुप्ता जी भी जुड़े हैं। और रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से किशन मंजानी।

रब किसी को किसी पर फिदा न करे, रब किसी को किसी पर फिदा न करे, करे तो कयामत तक जुदा न करे। यह माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, यह माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी तो नहीं पाता तन्हाई में। नमस्कार मेरे फौजी साथियों, आज मैं आपकी दोस्त आपके अपने कार्यक्रम शौर्य गाथा में कुछ दर्द भरे गीत लेकर उपस्थित हूँ, जो किसी की याद में है तो किसी के बिछड़ने के गम में है, तो किसी के बिछड़ने के डर में है। जुदाई, इस शब्द को सुनते ही एक अलग प्रकार का डर दिल में जाग उठता है। यह शब्द हमारे जीवन में दिलों में दर्द और वेदना का एहसास कराता है। जब दो लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े रहते हैं और अचानक उनमें दूरियां आ जाती है, तो जुदाई का एहसास दिल में गहरी छाप छोड़ जाता है। आंखों की नींद गायब हो जाती है, यह तन्हाई डसने को आती है। उफ, ये जुदाई। साथियों, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, जो फिल्म जुदाई से ली गई है। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है हरिहरन, अलका याग्निक और जसविंदर नरूला ने।

साथियों, जुदा होने का तथा जुदाई सहने का कोई भी कारण हो, जुदाई का दर्द बहुत गहरा और असरदार होता है। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि किसी कारणवश दो प्रेमी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और वे किस प्रकार तड़प में अपनी जिंदगी बिताते हैं। ठीक यही एहसास हमारे भी तो है। हम भी तो किसी से बिछड़ कर खुश नहीं रह पाते, हर पल उसकी याद सताती है। ऐसा लगता है अपने से जुदा होने पर सारे सपने टूट गए, यह सारा संसार उसके बिना सुना सुना लगता है, एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह जुदाई का विकट एहसास कब होता है? जब कोई अपने दिल के करीब हो। तो चलिए सुनते हैं एक और गीत, जिसमें ये सुनेंगे कि प्रेमी प्रेमिका की जुदाई में क्या स्थिति है। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम, आवाज दी है राहत फतेह अली खान और ऋचा शर्मा ने।

यह जुदाई एक भावनात्मक तनाव पैदा करती है जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से महसूस होता है। किसी करीबी से जुदा होने पर इंसान के मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। क्या वह मुझे भूल चुका है? क्या हम फिर कभी मिलेंगे? इस प्रकार के सवाल से मन उलझ जाता है। जुदाई का सबसे दर्दनाक पहलू यह होता है कि समय और हालात का नियंत्रण हमारे वश में नहीं होता। हालांकि कुछ रिश्ते हमारे यादों में ही बसे रहते हैं। समय का असर धीरे धीरे हमें इस सच्चाई से समझाता है कि हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कुछ रास्ते अलग अलग होते हैं। जुदाई भी इस यात्रा का एक हिस्सा बनकर आती है और यह हमें आगे बढ़ने और नए रिश्ते को अपनाने का प्रेरणा देती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और गीत जो फिल्म एक दूजे के लिए से ली गई है। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

आपकी याद दिलों को बेकरार करती है, नजर तलाश आपको बार बार करती है। गिला नहीं जो हम इतने दूर आपसे, हमारी तो जुदाई भी आपसे प्यार करती है। देखो यारो, कुछ जुदाई तो ऐसी ही होती है कि कहने को शरीर एक दूसरे से दूर है, मगर आत्मा एक दूसरे में ही बसी रहती है। जिंदगी में कुछ पल जरूर ऐसे आते हैं जब हम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। हमारे यहाँ फिल्मों में इस चीज को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है, जहाँ साफ साफ दिखता है कि प्रेमी प्रेमिका या किसी का भी किसी हालत में अलगाव हुआ है तथा वे किस प्रकार एक दूसरे से दूर होकर जी रहे हैं। अगर यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती तो यारो, यही तो मोहब्बत है जो एक दूसरे को दिल में बसाए रखती है। क्या करेगी, यह जिंदगी की राह कभी न कभी अलग मोड़ लेती है। आइए सुनते हैं एक और गीत जो फिल्म साथ साथ से ली गई है। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है चित्रा सिंह और जगजीत सिंह ने।

दोस्तों, आपने तो गुल और बुलबुल की कहानी तो जरूर सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो चलिए हम सुनते हैं इस अंतिम गीत में, जिसमें गुल और बुलबुल की प्रेम कहानी सुनेंगे। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। इसको अपनी मीठी और मधुर आवाज दी है मोहम्मद रफी और नगमानी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम एफ 213.77 मीटर तथा 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अहिले समय साँझको 6:05 भइसकेको छ र अब प्रस्तुत छ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीले लिएर आएका छौं सिक्किममा प्रारम्भ हुने मतदाता विशेष गहन संशोधन अर्थात एसआईआरमाथि राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज यादवसँग लिएको एक अन्तर्वार्ता।

0: अधिवेशनमा प्रसारण गरिने कार्यक्रमको छोटो जानकारी।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: 苗族宝贝。高连接组龙卡拉亚格尔基托修杜修加沙尼多尼修扎鲁基切居古纳雷宝贝。因当阿伯一切居住那高度来德中基金基伦布基塔丘等地亚格尔马米基南京屯地漂泊贝。你来南西宁波塘沙托港基内甲玉荣金地杨那金基。祝祭祝那罗安尼三日地三日他西金堂他哥送着祭长长祝登博贝达林巴祖的时间刚到那年年祭长大堂三种漂泊贝第二祝堂祭祝祭第几罗可能养生当为腾罗漂泊贝雷林地金堂玄德雷拉祭巴拉伦比祭先祝娘子吞地飘泊为洛书雷拉雷中雄基三度东恩雷拉唐东恩雷拉那土壤土壁出自主雷披参基出自阿桑耶加 KVA 读写音地那主织 KV 白地作主飘写音 HD Network 月地路基扩去亚耶当写音地雷萨恰 4th mile lower 三度唐Ranipul SBI ki teng lo New Year po in. Lo pechu phyakhen zu lo, lo zojo phyave kap lo. Tundi shu na se, she du. Tharin gini chul dikhar zu po in, tushin she.
1: Yo Akashwani Gantok ho. Samsamayik Bisheko Karyakram Samayik Samikshyama Prastut Chabarta Pradhan Mantrika Sat Apil.आर्थिक समृद्धि का सात खुड़किला वार्ताकार हुनुहुन्छ डाक्टर पारसमणि डंगाल

0: समसामयिक विषयको कार्यक्रम सामयिक समीक्षामा अहिले सुन्नुभयो वार्ता प्रधानमन्त्रीका साथ अपील आर्थिक समृद्धिका साथ खुड्किला वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पारसमणि डंगाल यो आकाशवाणी गान्तोक हो।
1: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै श्रोताले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा साथै न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। त श्रोता, समय बेलुकीको 7:05 भइसकेको छ भने हामी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं यहाँकै फोनमा आधारित र माइलो कार्यक्रम हेलो श्रोता। त आउनुहोस् कुरा गरौं आजको पहिलो कलरसित। हेलो आकाशवाणी गान्तोक।
2: हेलो
1: नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार, कैसे हो?
1: पहले अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं तो असम से बात कर रहा हूँ, सत्यपा भट्टाचार्य।
1: सत्यपा जी को तो कौन नहीं जानते, पूरे अब फेमस हो गए ना।
2: जी जी जी।
1: सत्यपा जी कैसे है?
2: मैं भी तो अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ।
1: बढ़िया है। तो आज तो बुधवार है, तो बन क्या रहा है? मछली
2: मछली मछली।
1: हाँ, कौन सा मछली?
2: बुआल मार।
1: कैसा होता है वो, काटा वाला?
2: हाँ, काटा वाला।
1: बाप रे, काटा घुसना जाए? दांत में काटा घुसना जाए? थोड़ा चुन चुन कर खाइएगा।
2: जी जी जी।
1: सब ठीक है ना?
2: ठीक है।
1: तब तो फिर अब रास्ते के लिए कौन सा गाना सुनाए फिर?
2: गाना सुना दीजिए। तो गाना आते ना, देखा है पहली बार।
1: देखा है पहली बार।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार आकाशवाणी गांतो।
0: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
0: मैं आपका प्यारा भैया आशुतोष देवनाथ त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
1: ओ आशुतोष जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: संगीता देवनाथ जी के हस्बैंड।
0: अर्धांगिनी
1: नहीं, मैं भी अर्धांगिनी बोलने वाली थी, मैं सोचा कि खाली खाली लड़की को अर्धांगिनी बोलते इसलिए।
0: अच्छा अच्छा,
1: 6 महीने बाद आपका फोन लगा, मगर संगीता जी तो करती रहती है।
0: हाँ, पिछले हफ्ता भी लगा था।
1: मतलब आप बात करे, आप फोन करे या संगीता जी फोन करे, एक ही है ना?
0: हाँ, एक ही है, एक ही है।
1: जी, आज तो हमेशा संगीता जी फोन करते थे, आज आशुतोष जी ने हमारे कार्यक्रम में फोन किया है ना, तो इतना मतलब आप लोग का शादी का इतना साल हो गया, संगीता जी आपको इतना अच्छे से खाना बनाकर खाती है, आपका इतना सेवा करती है, तो आज हमारे रेडियो के मार्फत से उनको क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर को अच्छा रखे, कुशल मंगल रखे और हमेशा हसमुख रखे।
1: हसमुख, हाँ, बहुत हंसती है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: अच्छा लगा। तो संगीता जी सुन रहे हैं, तो आशुतोष जी से ये प्यार भरा मैसेज सुनेगी ना तो खुश हो जाएगी, तो इसी के साथ बता दीजिए गाना कौन सा सुना है।
0: मैम जी, आज मुझे सुना दीजिए, फिल्म का नाम है परिचय और गाने का बोल है मुसाफिर हो या ना घर है ना ठिकाना, किशोर दा ने गाए गाने को। और ये गाना मैं पहले सुना चाहता हूँ सबका आदरणीय सुनम, और सुनाना चाहता हूँ राजल शारदा प्रसाद जी, विजय पांडे जी, आदरणीय हसमुख जी, एक्टिंग भैया रमेश प्रजापति, भाई राम बाबू शर्मा, चित्री भैया, प्यारा छोटा भैया अविनाश तेली त्रिपुरा, ये सुनने को मैं रिक्वेस्ट।
1: जी जी जी, धन्यवाद,
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी कांतो।
1: मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं कलाहांडी उड़ीसा से मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ।
0: अरे बाप रे, मनोज जी तो गायब ही हो गए थे।
1: जी जी, आपका स्टेशन को तो बहुत सारे श्रोता हो गए ना, तो फोन नहीं लग रहा है।
0: वही तो मनोज जी, तो मैं तो सोच रही थी मनोज जी तो अभी नहीं आ रहे, क्या हो गया कि कुछ
1: फोन नहीं लग रहा है मैडम।
0: मनोज जी सब ठीक चल रहा है ना?
1: हाँ, सब ठीक चल रहा है।
0: मनोज जी, तो आपका भाभी जी क्या करती है?
1: मेरे साथ खेती करते हैं।
0: ओ, आपके साथ ही काम करती है ना?
1: जी।
0: तो आज ना आपको एक चांस दे देते हैं ना, बेचारा उन्होंने आपके लिए कितना, परिवार के लिए कितना काम करती है ना, आपको इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाती है, आपका कपड़ा धोती है, खेती में भी काम करती है, तो आज प्यार भरा कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी बीवी को?
1: जी, मैं तो उनको भी थोड़ा काम में हेल्प कर लेता हूँ, कुछ खाना बनाने में, तो उनको भी मदद हो जाता है।
0: मतलब कुछ मैसेज देना है?
1: उसके लिए क्या मैसेज दूँ, वो तो मेरे पास है।
0: अरे बाप रे, उसके लिए क्या मैसेज, तो वो तो मेरे पास ही है।
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। मतलब आप हेल्प करती है ना उनको खाना बनाने में, कुछ
1: खाना बनाने में,
0: काम करने में,
1: काम करने में मदद कर लेता हूँ।
0: सबको हेल्प करना ही चाहिए, अपने बीबी कुछ कर रही तो उनको हेल्प करना ही चाहिए, उनको आगे बढ़ाना ही चाहिए, है कि नहीं?
1: उसने दुखी हो तो उसके लिए गाना भी गा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा।
0: तब तो चलिए उनके लिए सुनाते हैं आज गाना।
1: उनके लिए एक गाना है, जब हाले दिल।
0: अरे बाप रे, तब तो वो खुश हो जाएगी आज आपका गाना सुनकर।
1: जी। और दोस्तों के साथ तैयार करना चाहता हूँ।
0: जी,
1: चित्रा सेन जी और श्रीकांत जी और मंगेलाल जी और मेरा बेटा साहिल और बेटी श्वेता,
0: और स्पेशली विशेष कर भाभी जी को।
1: जी, तो बहुत शर्मा लेता हूँ।
0: वही तो, मैं तो ये सुनिए मनोज जी, मैं तो वही यही सोचती हूँ, आपने शादी कैसे की, इतना शर्माता है, फोन में बात करने से भी इतना शर्माते है, आप शादी कैसे किया वही पता नहीं चल रहा है।
1: परिवार वाले ने ही शादी कर दिया होता।
0: धन्यवाद मनोज जी, ऐसे फोन करते रहेगा कार्यक्रम में।
1: जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी कांतो।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी,
1: जी मैडम, मैं डी परेड में हूँ और आपके कार्यक्रम में फोन किया हूँ। यहाँ तो मैडम धूप भी है, उम्र गर्मी भी है, नर्सरी के बीच में खड़ा हूँ। ठंडा ठंडा थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, बातचीत हो रहा है तो जगह खुशी बढ़ रहा है और जगह खुशी बढ़ते हुए हवा भी तेज चल रहा है, ठंडा भी
0: चल रहा है, मतलब थोड़ा गर्मी से राहत ही मिल रहा है।
1: जी मैडम, थोड़ा थोड़ी छाया में खड़ा हूँ, हवा भी अच्छा चल रहा है।
0: जैसे कि आप लोग वहाँ का वो बताते हैं ना, छाव में खड़ा हूँ, पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, तो एकदम पूरा फिल्म जैसा लगता है।
1: जी,
0: मतलब जगह भी ऐसे होगा ना वहाँ पर।
1: जी मैडम,
0: तो बताइए गाना कौन सा सुना है फिर जंगल के बीच में।
1: जी तो फिल्म को गाना है किताब ठंडू की आंखों में, बाप का सुरमा चांद का सुरमा, गायक आदि पर। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निदेशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी केंद्र को, सब लोगों को, हेलो श्रोताओं को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, गंतों को, सभी भाई बहनों को जरूर सुनाइएगा।

0: जी
1: हारून जी ने तो बहुत दिनों बाद कॉल किया ना।
0: जी हाँ, काफी समय हो गया।
1: ऐसा ही हो रहा है अभी
0: 45 डिग्री पर गर्मी, तेज गर्मी हवाएं चल रही है, लपट चल रही है।
1: 45 डिग्री?
0: जी
1: बाप रे, 45 डिग्री तक यहाँ पर तो उतना तो नहीं, ऐसे ही। आज तो थोड़ा बारिश भी हो रहा है तो ऐसे ही चल रहा होगा 15-16।
0: जी जी, और अभी 15-20 दिन रोज पहले तो अभी आंधी तूफान पेड़ वगैरह गिर गए हैं, अभी तो बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान भी चला था, कुछ पेड़ भी गिर गए हैं। और जिस सब जगह मौसम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सब जगह का हाल है।
1: सब जगह पर ऐसे ही चल रहा है अभी।
0: जी जी,
1: मौसम की गड़बड़ी,
0: मौसम ही तो गड़बड़ जा रहे सर।
1: मोहम्मद हारून जी, सब ठीक है ना? बहुत दिनों बाद कॉल किया।
0: जी काफी समय हो गया, दूसरों को भी मौका मिलना भी जरूरी है। जी मैंने कहा यार फोन लगा लें, आज याद कर लें जनसोक में।
1: जी जी,
0: और बाकायदा आपसे बातचीत भी हो रही है। जी
1: तो बताइए, इसी खुशी में फिर गाना कौन सा सुनाए आज?
0: फिल्म का नाम है विजय तक, उसमें से गाना आप चला देना, कोई सा भी चला देना, कुमार सानू का।
1: जी, किस किस को सुनाना चाहेंगे फिर ये गीत?
0: सबसे पहले आप हैं मांगीलाल हैं, फिर सुम कुमार हैं, लजरा रोशनी हैं, भगवान सिंह, परमार सिंह, शारदा प्रसाद, रोकेट वर्मा, विजय पांडे, आर्य भाई मुरादाबाद, सलमान भाई शहडोल, अमित तिवारी, अमित तिवारी हैं जालौन के हैं, जो श्रोता सुनना है सबके लिए,
1: सबके लिए ना। जी धन्यवाद।

0: श्रोता समय यस बेला बेलुकीको 7:25 हुनै लागेको छ र अबको केही क्षणमै यस केन्द्रबाट सुन्नुहुनेछ नेपाली समाचार।
1: यो आकाशवाणी हो, समाचार वन्दना राईबाट सुन्नुहोस्। शुरूमा यस बुलेटिनका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज रोममा इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँग प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता गर्नुभयो, जसको उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा भारत इटली द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्नु रहेको थियो। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले ULPGM-V3 को सफल विकास परीक्षणको लागि रक्षा अनुसन्धान र विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रमहरू, रक्षा सह उत्पादन साझेदारहरू र उद्योगलाई बधाई दिनुभएको छ। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षाको सुरक्षित र निष्पक्ष सञ्चालन सुनिश्चित गर्न सतर्कता र सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिनुभएको छ। आईपीएल म्याचमा कोलकाताको इडन गार्डन्समा कोलकाता नाइट राइडर्सको मुकाबला मुम्बई इण्डियन्ससँग अहिले 7:30 हुनेछ। टस जितेर कोलकाता नाइट राइडर्सले पहिले बोलिङ गर्ने फैसला गरेको छ र मौसम विभागले यस हप्ता उत्तर पश्चिमी र मध्य भारतमा लू चल्ने पूर्वानुमान गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज रोममा इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँग प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता गर्नुभयो, जसको उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा भारत इटली द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्नु थियो। यो बैठक व्यापार, लगानी, प्रविधि, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा र रणनीतिक साझेदारीमा सहयोग बढ़ाउनमा केन्द्रित थियो। दुवै नेताहरूले पारस्परिक हितका क्षेत्रीय र विश्वव्यापी विकासहरूबारे पनि छलफल गरे।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदीले भारत यूरोपको बलियो सम्बन्धको लागि इटलीको समर्थनको प्रशंसा गर्नुभयो र उदयमान प्रविधि, विनिर्माण र दिगो विकासमा सहयोगको महत्वलाई प्रकाश पार्नुभयो। प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तापछि दुवै नेताहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र इटलीले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विशेष रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गर्नुभयो। वहाँले भन्नुभयो, भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-2029 द्विपक्षीय सम्बन्धको लागि व्यावहारिक र भविष्यवादी रूपरेखा प्रदान गर्दछ।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: समुद्री शक्तिको रूपमा भारत र इटलीले ढुवानी, बन्दरगाह आधुनिकीकरण, रसद र नीलो अर्थतन्त्रमा सँगै काम गर्ने

0: छन् वहाँले भन्नुभयो। श्री मोदीले भन्नुभयो, भारत र इटली, युक्रेन, पश्चिम एशिया र अन्य विश्वव्यापी तनावहरूको बारेमा निरन्तर सम्पर्कमा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्दहरूमा भारतको अडान दोहराउँदै सबै मुद्दाहरू संवाद र कूटनीति मार्फत समाधान गरिनुपर्छ वहाँले भन्नुभयो। इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले भारत र इटलीले सम्बन्धलाई विशेष रणनीतिक साझेदारीमा उचाल्दै आएको र द्विपक्षीय सम्बन्धहरू अब आफ्नो पूर्ण क्षमतालाई साकार पार्न सक्षम भएको भन्नुभयो। भारतले आत्मनिर्भर भारत पहल अन्तर्गत आफ्नो स्वदेशी रक्षा क्षमतालाई सुदृढ़ पार्ने दिशामा अर्को महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन डीआरडीओले अनम्यान्ड एरियल व्हीकल लन्च्ड प्रिसिसन गाइडेड मिसाइल यूएलपीजीएमवी3 को अन्तिम विकास परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ, जुन देशको रक्षा क्षेत्रको लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले यूएलपीजीएमवी3 को सफल विकास परीक्षणको लागि रक्षा अनुसन्धान र विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रमहरू, रक्षा सह उत्पादन साझेदारहरू र उद्योगलाई बधाई दिनुभएको छ। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले आज दक्षिण कोरियाली रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन मन्त्री ली योङ चुललाई सियोलमा भेट्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै वहाँले भन्नुभयो, बैठकमा दुवै पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन र संयुक्त निर्यातका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्न आपसी प्रयासहरूको लाभ उठाउन सहमत भए। यो आकाशवाणी हो। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षाको सुरक्षित र निष्पक्ष सञ्चालन सुनिश्चित गर्न सतर्कता र सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिनुभएको छ। वहाँले आज नयाँ दिल्लीमा केन्द्रीय सुरक्षा र गुप्तचर एजेन्सीहरूसँगको उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकको अध्यक्षता गर्दै यो कुरा भन्नुभयो। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले आज सिलीगुड़ी स्थित उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तर कन्यामा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक समीक्षा बैठक गर्नुभयो। बैठकमा वहाँले उत्तर बंगालको समग्र विकास आफ्नो सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। बैठकमा उत्तर बंगालका 5 जिल्ला दार्जीलिङ, कालिम्पोङ, जलपाईगुड़ी, अलिपुरद्वार र कुचबिहारका नागरिक र पुलिस प्रशासनिक अधिकारीहरू साथै सांसद र विधायकहरू उपस्थित थिए। आईपीएल म्याचमा कोलकाताको इडन गार्डन्समा कोलकाता नाइट राइडर्सको मुकाबिला मुम्बई इण्डियन्ससँग भइरहेको छ। टस जितेर कोलकाता नाइट राइडर्सले पहिले बोलिङ गर्ने फैसला गरेको छ। फुटबलमा सेफ महिला च्याम्पियनशीप 2026 लागि प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरिएको छ। महिला राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक क्रिस्पिन छेत्रीले हिजो 26 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरे। प्रतियोगिता यस महिनाको 25 तारीकदेखि 6 जूनसम्म गोवाको मडगाउँस्थित पण्डित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिता नजिकै गर्दा 23 खेलाड़ीहरूको अन्तिम टोलीको घोषणा गरिनेछ। समूह बीमा रहेको भारतले 31 मईमा बंगलादेशसँग खेल्न अघि उद्घाटन दिन मालदीपसँग खेल्नेछ। अर्कोतर्फ समूह एमा नेपाल, श्रीलंका र भूटान छन्। प्रत्येक समूहका शीर्ष दुई टोलीले 3 जूनमा हुने सेमीफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल 6 जूनका दिन हुनेछ। मौसम विभागले यस हप्ता उत्तर पश्चिमी र मध्य भारतमा गर्मीको लहर अर्थात लू चल्ने पूर्वानुमान गरेको छ। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना र उत्तराखण्डमा आगामी 4 दिनसम्म यस्तो स्थिति रहनु सक्छ। असम, मेघालय, केरला, माहे, पश्चिम बंगालको तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाड, पुदुचेरी, कराईकल र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहमा भोलिसम्म भारी वर्षा हुन सक्छ। बिहार, हिमाचल प्रदेश, आन्तरिक र तटीय कर्नाटक, झारखण्ड, लक्षद्वीप र कर्नाटकमा आगामी 2 दिनसम्म मेघ गर्जन र आँधीबेरी आउने अनुमान गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले आज भनेको छ, कंगो र युगाण्डामा इबोला भाइरस फैलिने जोखिम राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा उच्च छ तर विश्वव्यापी स्तरमा कम छ। डब्ल्यूएचओले इबोला प्रकोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा गरेको छ, जसको लागि समन्वित प्रतिक्रिया आवश्यक छ। अब अन्तमा सुन्नुहोस् यस बुलेटिनका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज रोममा इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता गर्नुभयो, जसको उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा भारत इटली द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्नु रहेको थियो। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले यूएलपीजीएम V3 को सफल विकास परीक्षणका लागि रक्षा अनुसन्धान र विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रमहरू, रक्षा सह उत्पादन साझेदारहरू र उद्योगलाई बधाई दिनुभएको छ। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षाको सुरक्षित र निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित गर्न सतर्कता र सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिनुभएको छ। आईपीएल म्याचमा कोलकाताको इडन गार्डन्समा कोलकाता नाइट राइडर्सको मुकाबला मुम्बई इण्डियन्ससँग भइरहेको छ र मौसम विभागले यस हप्ता उत्तर पश्चिमी र मध्य भारतमा लू चल्ने पूर्वानुमान गरेको छ। आकाशवाणीबाट समाचार पूरा भयो।
1: हेलो आकाशवाणी गान्तोक।
2: हेलो आकाशवाणी गान्तोक, पूनम जी को मेरा फिर से नमस्कार।
1: फिर से नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं आपका जाना पहचाना श्रोता, नियमित श्रोता, आज आप खुद पहचाने की मैं कौन बात कर रहा हूँ,
1: वही तो पता ही नहीं लग रहा है।
2: शायद आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होगी। चलो मैं आपको याद ना तो मैं
1: बहुत ही कमजोर हो गए।
2: जी जी जी जी, कोई बात नहीं, मैं आपको याद ला देता हूँ
1: राकेश जी।
2: और हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: देखिए लास्ट में पकड़ लिया ना।
2: जी जी जी,
1: शिमला वाले राकेश जी।
2: जी जी, शिमला वाले राकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: वही तो आपने याददाश्त थोड़ा कमजोर बोल रहे हैं, तो ऐसा सोचा कि ये आवाज तो हर एक सप्ताह फोन करता है, मगर नहीं, हमेशा आप ना दूसरे आवाज में बात करते थे ना, आज बहुत लग रहा है कि बहुत खुश लग रहा है ना, इसलिए।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कॉल कनेक्ट करना पड़ता, तो फिर खुशी हो जाती है कि जानना लग गया।
1: शिमला में मौसम कैसा है?
2: जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत सुन्न है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आप बताइए, जो आपके पहले श्रोता आए थे तो उनकी गर्मी कैसी चल रही होगी?
1: उन लोग का गर्मी तो 45 डिग्री चल रहा है।
2: तो हमारे यहाँ तो 20-25 डिग्री तक तापमान, 40-45, पर मेरा, मैं ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ जो है ठंडी ठंडी हवा आ जाती है, तो कूलर और एसी वाली हवा चलती रहती है। नेचुरल बिल्कुल
1: जी, हम लोग का भी यहाँ पर ऐसा ही है।
2: तो अगली बार उनका कॉल आए तो मेरा सुझाव आपको ये रहेगा, तो अगर आप फिर बोले गर्मी आ रही, तो आप उनको बोलिएगा कि आप सिक्किम और हिमाचल आए घूमने,
1: गर्मी अब ज्यादा गर्मी किसको लगता है, उधर ही भेज देंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो अगली बार जो भी सताएंगे कि भी आप शिमला और हिमाचल सिक्किम जाइए, तो आप और सिक्किम में आप कॉल लगाइए अपने प्रोग्राम में, फिर आप देखो गर्मी से आपको राहत मिल जाएगी।
1: जी ऐसा ही करेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बताइए राकेश जी, गाना कौन सा सुना है
2: आज? मुझे गाना सुनना है अंदाज मूवी का, वो सही गाना है कितना पागल दिल है, और ये गाना सबसे पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा, तो जैसे 40-45 गर्मी वाले श्रोता उनके लिए, और पूरण वर्मा जयपुर राजस्थान से, अविनाश तेली, मंगीलाल चंदेल, भगवान सिंह परमार और शारदा प्रसाद प्रजापति, और आपके क्षेत्र से सिक्किम से अर्जुन प्रधान, और तमाम सुनने वाले श्रोता है जिनका भी नाम छूट गया, उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
1: जी जी जी, धन्यवाद राकेश जी, तो सुनाते है फिल्म अंदाज से गीत।
2: जी जी, धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी गांतो,
1: आदरणीय पूनम जी, सादर नमस्कार जी। मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय पूनम जी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी गंगटोक से।
0: जी नमस्कार।
1: सादर नमस्कार। आप कैसी हैं?
0: जी मैं ठीक हूँ। अभी
1: आप ठीक है? गला वाला सब ठीक हो गया?
0: गला ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया, अभी ठीक चल रहा
1: है। ठंड कैसा है वहाँ पे?
0: मतलब उतना ठंड तो नहीं है, फिर भी बारिश होने से थोड़ा थोड़ा है, अभी तो ज्यादा नहीं है।
1: जी आप मजे में है, बढ़िया वातावरण है,
0: क्योंकि इतना गर्मी भी नहीं हो रहा है, ठंड भी नहीं हो रहा है ना, तो एकदम मजे में है।
1: और आपके भैया लोग जो है शारदा प्रसाद और परिवार, प्रचंड गर्मी, प्रचंड धूप, गर्म गर्म हवाएं का थपेड़ चल रहा है, और हम ऐसे वातावरण में घर के अंदर रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं, और आप लोगों से वार्तालाप करके बेहद खुशी और प्रसन्नता होती है और गर्मी का एहसास नहीं होता।
0: जी जी, अभी अभी राकेश जी ने फोन किया था ना, शिमला वाले राकेश जी ने,
1: जी
0: तो उन्होंने एक संदेश भेजा है कि जितने लोग को भी आज कॉल करे, जितने लोग को भी ज्यादा गर्मी हो रहा है, तो या तो हिमाचल आ जाए या तो सिक्किम आ जाए, बोले।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आजकल तो बहुत से पर्यटक लोग जाते हैं पर्यटन करने के लिए, पहाड़ों पे जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, देहरादून जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, मेघालय जाते हैं,
0: जी।
1: तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक रहता है, जम्मू कश्मीर भी जाली जाते हैं लोग बाग,
0: तो उन्होंने सबके लिए एक नेवता भेजा है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा है, पर्यटन करना भी चाहिए। और हम अगले महीने जा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भ्रमण करने।
0: ओ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़,
1: जी
0: वो भी तो मगर गर्मी का ही जगह है।
1: हाँ गर्मी है लेकिन उतना गर्मी नहीं है, और हम उड़ीसा तक चले जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा वातावरण गर्म है, ऐसा ही है जैसा यहाँ पर है मथुरा।
0: ऐसा ही ठीक है। तो शारदा जी, तो आपने खुशखबरी तो बता दिया, बताइए उसी खुशी में गाना कौन सा सुनाए आज?
1: आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है आज की आवाज, महेंद्र कपूर साहब की आवाज है। दिल ही दिल ने ले लिया दिल मेहरबानी, ये प्यारा सा खूबसूरत महेंद्र कपूर साहब की आवाज में गाना सबसे पहले समर्पित करता हूँ पूनम जी को गंगटोक से, और हमारे मित्र अर्जुन प्रधान जी हैं सिक्किम गंगटोक से, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेन वर्मा है, राजू यादव है, और पूरन वर्मा है, पुष्कर नाथ जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, साथ में राकेश कुमार जी हैं, पूरन वर्मा है, इन सभी दोस्तों के साथ साथ में केशव प्रसाद शर्मा जी हैं, विद्यारत शर्मा जी हैं, विजय कुमार पांडे जी, इन सभी दोस्तों के साथ साथ में बाबा प्रेमदास को भी याद करता हूँ, बड़े बुजुर्ग श्रोता है और हमेशा कार्यक्रम सुनते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।

0: इस दुनिया में क्या है।
1: हेलो आकाशवाणी कांतो।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं आपका नेम है श्वेता धीरज बारी बात कर रहा हूँ। पूनम जी ने
1: जी जी जी धीरज जी
2: कैसे हुआ?
1: धीरज जी आप तो कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ।
1: गुजरात से
2: कम छो
1: मजा मचो
2: क्या लगता है जो लैंग्वेज में मातृभाषा की लैंग्वेज में कोई भी बात करे वो बहुत अच्छा लगता है ना। सिक्किम की अगर मैं भाषा जानता हूँ मैं बात करूँ तो आपको भी अच्छा लगे।
1: अच्छा लगता है हाँ, अपना भाषा
2: भारत की संस्कृति है, रहन सहन पहनावा बोलचाल और जो आतिथ्य सत्कार भारतीय का एक अमूल्य वारसा है। और हम अभी जो अलग अलग रहते हैं परिवार में भाई भाई वो ठीक है अलग अलग रहना, लेकिन अगर हो सके अपने मकान साथ में हो तो खाने का समय दोनों टाइम का या एक टाइम का साथ में करे तो कई बातें का समस्या का हल निकल सकता है दीदी और एक अच्छी यानी सुखद पल भी यानी बिताती जाती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात बता दिया आपने
2: जी।
1: पहले जो इन फैमिली होते थे ना उस टाइम में बहुत अच्छा लगता था।
2: हाँ, और गांव में क्या है अभी भी है यही परंपरा,
1: अगर सब लोग शहर आ गए तो शहर में तो थोड़ा
2: हाँ बदलाव है,
1: बदलाव हो गए
2: लेकिन हमें वो बदलाव को वापिस अपने पुराने दौर में जा सकते हैं अगर हमारे में जो मनोबल हो तो
1: चाहे तो। जी जी जी बहुत अच्छा बात धीरज जी ने बहुत अच्छी बात बता दिया। बताइए तो फिर इसी खुशी में गाना कौन सा सुनाए आज?
2: परिवार की भावना को कोई मजबूत करता हुआ गाना हो तो आपकी पसंद का वो बहुत अच्छा लगे। और नाम ले सकूं हमारे मित्र का? गुणवंत भाई करू, लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम राय बोलू जी, तुकाराम जी है, फिर गंगाधर जी है, फिर दिलीप आहू जी है। हमारा एक आकाशवाणी फोन एकता ग्रुप है और इसमें हम गंगटोक से जुड़ते हैं समय अनुसार और हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: धन्यवाद, ऐसे फोन करते रहेगा धीरज जी।
2: जी जी धन्यवाद, आपका दिन मंगल।

0: हजुर श्रोता, यहाँले सुनिरहनु भएको छ यहाँकै फोनमा आधारित रमाइलो कार्यक्रम हेलो श्रोता। यदि तपाईँले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेलो श्रोतामा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने 03592201171 कल गरेर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त आउनुहोस् फेरि पनि कुरा गरौं अर्को कलरसित। हेलो, आकाशवाणी गान्तो।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी, नमस्कार।
1: मैडम बहुत देर से ट्राई कर रहा था, ये मान लो आते ये सांस ही छूट गई थी कि आते मैं पूनम मैडम की आवाज मेरे कानों में सुनाई देगी कि नहीं देगी।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनाई देगा।
1: जी जी, तो
0: कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: जी, और आकाशवाणी की गांतों पे कॉल करने वालों की हार नहीं होती।
0: बिल्कुल हार नहीं होती। इस सप्ताह हार हो गई तो फिर दूसरा सप्ताह जीत हो जाएगा।
1: हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। ओ, और सुनाइए मैडम, आज मैं कौन सा नंबर पे आ गया?
0: आज आप 9वें नंबर पर है।
1: ओ मैडम, आप तो खतरनाक पीछे रह गया।
0: पीछे रह गया, पीछे रह गया।
1: जी जी,
0: फिर भी फोन लग गया, यही बड़ी बात है।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम, बहुत देर से ट्राई कर रहा था, पर ये मान लो आपसे बात हो गई,
0: फाइनली हो ही गया।
1: जी जी, और सुनाइए।
0: और सुनाइए, तो क्या सुनाइए, सब ठीक चल रहा है?
1: इधर भी ऐसा हो रहा है, मौसम बहुत गर्मी पड़ रही है, और मान लो अभी तो थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, पर दिन में पड़ जाएगी 12 बजे से गर्मी। तो आज फिल्म का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, और गाने के बोले सुने हैं नजारे, दिल तुझको पुकारे, जाने जा जाने जा, ये कुछ गाना गाने के बोले। शायद
0: किस चीज को सुनाना चाहेंगे फिर?
1: सबसे पहले तो पूनम मैडम आप हैं, और अंकुश सर भी है, और कुछ मैडम भी है, और रस्तम जी भी है, और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है, और शारदा प्रसाद जी है, और जितने कॉलर लाइव गोल्डी बाई स्टीवार, तमाम श्रोता आकाशवाणी गान टॉक के चाहने वालों के लिए।

0: हेलो आकाशवाणी कांत।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडावेली जिला सागर मध्य प्रदेश आपके निवे श्रोता लक्ष्मण कौन चाय वाले चाय पी लो।
0: बहुत दिनों बाद चाय पीने के मिल रहा है फिर।
1: हाँ, अभी हम टाइम नहीं मिल रहा था।
0: अभी तो बहुत बिजी होंगे ना, इसलिए।
1: हाँ,
0: से हो गया कि 3-4 हफ्ते से चाय नहीं पी रहे।
1: हाँ, इसलिए हमने कि आज पिला दे दीदी को चाय।
0: जी, समय निकाल कर भी चाय पिला दी आ गई।
1: हाँ, तो अभी बहुत शादी भी लगी रही है, बहुत
0: बिजी
1: है। अच्छा चल रहा है,
0: अच्छा चल रहा है, इसीलिए तो बिजी है ना।
1: हाँ,
0: भगवान करेगी और भी अच्छा चले आपका बिजनेस।
1: हाँ,
0: तो बताइए लक्ष्मण जी, इसी खुशी में गाना कौन सा सुनाए?
1: एक दाता पिक्चर का है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे।

0: और हमारे भगवान सिंह है, गजराज लोधी है, मांगीलाल चन्नी, बसंती लाल सुरबंती, सुबन कटारे, ऋषिकेश तिवारी, अमित तिवारी, मुकेश भाई साहब, सचिन भाई साहब, सब
1: सभी के लिए।
0: हाँ दीदी
1: जी, धन्यवाद लक्ष्मण जी।
0: ठीक है दीदी, नमस्कार।

0: हेलो आकाश विनिकांत।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
1: जी, हम धेमाजी आसाम से बिमल बसुमतारी बोल रहा हूँ।
0: जी बिमल जी, कैसे हैं? आसाम का क्या है हालचाल?
1: जी, आसाम में आज पूरा धूप हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है मैम।
0: गर्मी चल रहा है ना?
1: जी, कल से थोड़ा धूपे है, आज भी पूरा धूप है, बहुत गर्मी हो रहा है।
0: फिर गर्मी शुरू हो गया उधर?
1: जी जी मैम। वहाँ कैसे है हालचाल मैम?
0: यहाँ तो गर्मी भी है, थोड़ा थोड़ा ठंड भी है।
1: जी जी,
0: मतलब है अच्छा मौसम।
1: हमको गाना सुनना है मैम।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा?
1: ये कोयला फिल्म है ना मैम?
0: जी जी जी,
1: उसका ये गाना है ना, देखा तुझे तो, ये गाना जी मैम बहुत अच्छा लगता है। ये गाना
0: बहुत अच्छा गाना
1: हाँ?
0: है।
1: जी जी, हम ये गाना मेरे दोस्त के लिए दिल्ली से करना चाहते मैम। हम लोग का है फाइकोन मुंडा है, अमोल बसुमतारी है, रमेश पत्र है, रमेश प्रजापति है, राकेश है, धर्मवीर है, रघुबीला मिठा है। हम लोग का बहुत दोस्त है, सबके लिए दिल्ली कर रहा हूँ मैम। और आपके
0: लिए बिमल बसुमतारी जी की तरफ से जी धन्यवाद।

0: श्रोता तिन्जेल प्रस्तुत थियो कार्यक्रम सुर संसार अन्तर्गत पण्डित सीआरएम तिवारीबाट शास्त्रीय गायन धमार। हामी आकाशवाणी गान्तोकको रात्रि प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौँ। श्रोता, समय यस बेला रात्रिको 8:45 हुनै लागेको छ र अबको केही क्षणमै आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउने छु क्रमले हिन्दी अनि अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है।

0: यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्या के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के

0: बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप हैज ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
3: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific.

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मान

0: बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: डॉक्टर अंक्रोमा हैड सेड एंड आई कोट, आई एम नॉट अफ्रीकन बिकॉज आई वॉज बोर्न इन अफ्रीका बट बिकॉज अफ्रीका वॉज बोर्न इन मी। इन द सेम वे इंडिया कैरी अफ्रीका इन इट्स हार्ट, इंडिया एंड अफ्रीका शेयर अ ड्रीम वेर एवरी चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटीज, वेर एवरी वॉइस इज हर्ड, वेर नेशंस राइज टूगेदर नॉट अ पार्ट। लेट अस बिल्ड अ पार्टनरशिप नॉट ओनली फॉर टूडे बट फॉर जनरेशंस टू कम।
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
1: आज पाकिस्तान भी भलीभांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
3: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण

0: इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे, एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वांट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इनटू आवर लाइव्स, वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, we will discuss regulatory issues and promote common standards, we will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms, we will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy, technology is evolving, costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत के इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला है, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट

0: उर्सुला वॉन डर लैन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहां पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना, भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने यह बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
0: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देख

0: हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
2: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: मिडियनमा 213.67 मिटर तथा 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको रात्रि प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अहिले समय रात्रिको ठिक 10 बजेको छ। त आउनुहोस् अब 10:30 अर्थात आजको सभाको अन्तसम्म हामी मनोरञ्जन गरौं विभिन्न हिन्दी फिल्मी गीतहरू सुनेर। त आउनुहोस् श्रोता, हाम्रो आजको प्रथम प्रस्तुति छ लगान फिल्मबाट उदित नारायण अनि अलका याग्निकको आवाजमा रहेको यो गीत।